0: तेरा सब सदका,
1: वाहगुरु तेरा सब सदका,
0: कई जन्म गजमीन करंगा,
1: कई जन्म गजमीन करंगा,
0: वाहगुरु तेरा।

संप्रदायी विचारधारा अनुसार है। कुछ जन कुछ निंदक लोगों ने यह गल प्रचलित की सी कि 16 अष्टपदियां श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जो उचारियां उदों महाराज जी नू बाणी फुरनी बंद हो गई तो फिर अगों बाबा श्री चंद जी ने बाणी उचारी। ये बिलकुल अजोग गलत गल है, ये निंदक है, लोग निंदकां दा ए लिखता भी ऐसियां मिलदियां ने। साध संगत जी लिख भी दिता सी पर ये बिलकुल अजोग है। संप्रदायी ढांचा संप्रदायी विचारधारा इस दे बिलकुल विरोध दे विच है। श्रीमान बाबा जी बाबा श्री चंद जी महापुरख सत्कार योग हन पर जो ए मन घटत गल फैलाई गई है ए गलत है। ए पंजवें पातशाह महाराज जियां दा उचारण कीता कल दे दीवाना विच आप जियां ने पूर्ण थानका सुनी सी। एक पाठ अंतर भेद दे नाल इत्थे पाठ नूं उचारण करना जिवें मूल मंत्र दे विच आपां है भी पढ़दे हां इत्थे भी है तो दोवें पाठ भी तो भे पाव बिहारी की बजाय सिहारी है। संगत दे चरणा विच बेनती है पाठ अंतर भेद नूं जाणदिआं होइआं पूर्ण श्रद्धा रखदे होए श्री गुरु अर्जन देव महाराज जीआं दी संपूर्ण गुरबाणी जाण के हिरदे विच वसाउणी। सचे पातशाह महाराज इस अष्टपदी दे विच वाहिगुरु दा रूप जो सब तो औखा समझ आउण वाला दसदे ने लोक उस दे बारे सौख्या ही जानण दे बारे कि उहदा सरूप किहो जिहा है इस सारी अष्टपदी दे विच श्लोक दे विच बख्शिश है ते सारे अष्टपदी दे विच खोल के दस्या कि उहदा स्वरूप किहो जिहा ने उहदे गुण किहो जिहे हन। गरीब नवाज सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी कृपा कर रहे हन जी।

तकरीबन पहले शब्द सत ते ही विश्राम आउणगे। जे कोई अगे पिछे विश्राम आउंदा है जिथे दो वार आउंदा उथे बेनती कीती जावेगी। जेड़ियां पंक्तियां च दो वार सत पद आ रहा है पहले सत पद ते विश्राम जानना।

सतगुर सिख का हलत पलत सवारै। ए हलत पलत पाठ एदे च लल्ले शुद्ध ही उचारण करने, हलत पलत नहीं कहना। आम साध संगत जी जदो असी पाठ मेहनत नहीं कीती हुंदी ते लल्ला बहुत अशुद्ध बोलदे हां। हलत पलत उचारण नहीं, हलत पलत पूरे लल्ले दी आवाज जुबान नू कस के रखना, तड़ च रखना, ढिली नहीं पैण देना। जदो जुबान ढिली हुंदी है उदो साध संगत जी लल्ला जिहड़ा है ओ चरणा च बिंदी आला लल्ला बोलिया जांदा। सो इस करके पूरी जुबान नू कस के रखना सतगुर सिख का हलत पलत सवार है।

0: कछ परम सहस सियानप लया न जाइय नानक ऐसा गुर बड़भागी पाइय सफल दर्शन पेखत पुनीत पारसत चरण गात निर्मल रीत
1: गात, गात
0: पारसत

इस सवाल जवाब में फिर थोड़े सामने रखा जन्म साखी जी ने। फकीरी चीज था, फकीरी की है। फकीर किसनु कहंदे ने, संत किसनु कहंदे ने। उस दिन भी मैं अर्ज की थी सी, संत दिखाई देना एक श्रृंगार है, संत हो जाना एक तपस्या है, मेहनत है, कठोर मेहनत है। संत दिखाई दे जाना ते संत नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मुर्दा शिंगारिया होया और कुछ भी नहीं है। नाम बिना जेता व्यवहार जो मेरे तक मिथिया श्रृंगार, ए मुर्दे नु शिंगारिया गया। धार्मिक लिबास ते है, धार्मिक जीवन नहीं है, धार्मिक जिंदगी नहीं है, सिर्फ लिबास ही लिबास। फकीरी चीस्त, फकीरी किसनु कहंदे ने। इब्तिदाए फकीरी फनास्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसे उच्चे आदर्श लई अपने आप नु कुर्बान कर देना, मिटा देना और हमेशा लई अमर तत् दी प्राप्ति कर लेनी, बस इसनु फकीरी कहंदे ने। गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने जीवन दे राही अर्थ सामने रख दिते। कहिंदे ने मनुख नूं तीन घटनावां तो गुजरना पैंदा, जन्म जीवन मरण। जन्म होया होवेगा, जी रहा होवेगा, मर गया होवेगा। इना तीन अवस्थावां तो हर एक नूं लंघना पैंदा है, जन्म जीवन मरण। दुनिया दे कुछ ऐसे पुरुष ने, इतिहासकारां ने उना दे जीवन दी कथा नूं लिखिया है। जन्म किथे होया सी, मां बाप कौन सन, ए भी नहीं पता। बहुत सारे भगतां दा जीवन, बहुत सारे क्रांतिकारियां दा जीवन लिखण वालियां ने, इतिहासकारां नूं पता भी नहीं चल सके उनां दे मां बाप कौन सन, जन्म किथे होया सी, कदों होया सी। जन्म दी कोई छाप नहीं है, इतिहास दे जीवन दी छाप है। जो कुछ वो करदे रहे उस नाल जगत नूं कुछ मिलिया। तो इतिहासकारां ने जीवन दी फिकर की थी, जन्म दी नहीं। फिर कुछ ऐसे ने जिन्हां दा मरना बड़ा महान सी, उन्हां दी मौत कुछ दे गई, उन्हां दी मौत दे नाल कुछ क्रांति होई, उन्हां दा मरना जगत दी झोली विच कुछ पा गया। तो इतिहासकारां ने उन्हां दी मौत बारे बड़ा लिखा है। जैसे मैं देखदा शहीद भगत सिंह दी समाध ते हर साल मेला लगदा है फिरोजपुर दे च। करीबन करीबन 1.5-2 लाख बंदे कठे हुंदे ने, पंजाब दी सारी मिनिस्ट्री ते पहुंचदी है, सेंट्रल तो भी पहुंचदे ने मिनिस्टर। फुल भेंट करन वास्ते, फुल माला चढ़ाने वास्ते। दरअसल उस पुरुष दा मरना इतना महान सी, कुछ दे गया, उदी मौत कुछ दे गई। उस दी मौत जगत वासियां दी झोली च कुछ पा गई। तो इतिहासकारां ने उस दी मौत नूं लिया है, बरसी मनांदे ने, उस दिन दुनिया कठी होंदी है। इतिहास दी कोई लंबा चौड़ा ए जिक्र नहीं, कदो जमया, कौन मां बाप सन, किस शहर दे जमया, कोई जन्म कथा नहीं है, मरण कथा है। तो किसे दा मरना इतना महान आउंदा है कि कलम दे

हस्त खेलत तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। मंदिर देच भक्ति करदिया प्रभु दे गीत गाउंदिया क्यों उठाए गए, क्यों बाहर कड्डे गए? क्योंकि शूद्र जाति दे सन, ते शूद्र जाति लई मंदिरां दा प्रवेश बंद सी। आप स्वयं कहंदे ने, हस्त खलित तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। हीनड़ी जात मेरी जाद मराया, छीपे के जन्म मुको काहे को आया। भक्ति भाव विच भिजे गीत आप जुगारे सन, ते मंदरां विच जो कथा कीर्तन होंदा सी उस दे जो सुनन दा आप दे अंदर शौक सी, लेकिन ब्राह्मणा दा जो व्यवहार सी उस तो दुख तो के आप कहंदे ने, छीपे के जन्म मोको काहे को आया। हे प्रभु, तू छीबे दे घर मैनू जन्म क्यों दिता? क्योंकि भक्ति करन दा अख्तियार लोकी मैनू नहीं देंदे, मंदरां दे चों तके मार के कढ़दे ने। ले कमली चलियो पलटाए, देहुरे पाछे बैठा जाए। आखिर अपना चदरा विछा के जिस दे उत्ते बैठा होया सी उन्नू संभाल के समेट के मंदिर दे पिछवाड़े जा बैठा। आप दा ही वाक है, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, भगत जना का देहुरा फिरे। जैसे जैसे वो प्रभु दे गीत गाउंदे ने, प्रभु विचलीन होंदे ने, वैसे वैसे मंदिर फिरदा है। और मंदिर दा जो मुख द्वार सी उस दा मुंह नामदेव जी दी तरफ हो गया, मूर्तियां दा मुंह नामदेव जी दी तरफ हो गया, और पंडियां दी तरफ पिछवाड़ ला। फेर दिया नामे को देहुरा, पंडियन को पिछवाड़ ला। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा भी फरमान है, हंकारियां निंदका पिठ दे, नाम देव मुख लाया। ए मंदिर गौंडा देच अज भी मौजूद है, श्री सचखंड हजूर साहब तो गालबन 40 मील दी दूरी दे औरंगाबाद रोड देते। ए गौंडा नाम दा बहुत वड्डा तीर्थ है। इस औंडा नाम दे तीर्थ दे उत्ते ही श्री नामदेव जी महाराज ने ए प्रभु दे गीत गाए, ते आप नू तके मार के बाहर कढ़िया गया। ए मंदिर इतिहासक मंदिर है और कस्बे दा नाम औंडा है। महाराष्ट्र दे बेशुमार तीर्थां दे चों ए अस्थान भी तीर्थ सतल करके बहुत मशहूर है। और श्री नामदेव जी महाराज दा भी अस्थान इस मंदिर दे अज बनया है। भावे आप शरीरक रूप दे जद मौजूद सन ता आप नूं धक्के मार के बाहर कढ़िया गया, लेकिन अज उन्हां दी मूर्ति मंदिर दे द्वार तों बाहर स्थापन कीती हुई है। और दूरों ही पुजारी आवाज मार देन, संत नामदेव दे दर्शन करो, संत नामदेव दे दर्शन करो। लेकिन ए अजूबा पृथ्वी ते मौजूद है कि मूर्तियां दा मुंह एक पासे है, मंदिर दा मुंह दूसरे पासे है। और ए अजूबा कहंदे ने श्री नामदेव जी महाराज करके होया, क्योंकि आप नु जब धक्के मार के बाहर कढ़िया गया, आप पीछे जा बैठे तो मूर्तियां ने भी रुख नामदेव दी तरफ ही कर लिया। खैर महाराष्ट्र देच भ्रमण करदे हां, प्रभु गीत गाउंदे हां, आप मनुखता लई एक पवित्र माहौल बना रहे सन। दरअसल भगत दा होना ही वातावरण दा पवित्र होना है। ओदे शरीर दे चों जो लहरां निकलदियां ने, तिरंगा निकलदियां ने, ओ आस पास दे माहौल नूं पवित्र करदियां ने। जैसे कि भगत कबीर दा कहना है, कबीर सो मुख धन है, जय मुख कहिए राम देही।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ओए जो दिस है अंबर तारे।

0: गई, पर अंदर वाला ने गुरमुखो आओ बाणी अंदरों चलण वास्ते जे यतन करिए अंदरों तुरंदा केवल कन रस तक सीमित ना रहिए। ठीक है रब मेर करे कन्ना राही मैं बेनती की बाणी जरूर अंदर जाती है, पर अंदर जान दा ताई फायदा जे जीवन पलटेगा दे। सतगुरु मेर करे सिमरन और सेवा नू जिंदगी दा आधार बनाइए ता जो असी कुछ खट के जाइए। नहीं तो एक सज्जन दे बोल ने मैं समाप्ति करा, वो कहिंदा बंदे दी जिंदगी दे चार हिस्से ने। कदी देखो कहिंदे कुछ बंदे ता ओ ने जेड़े दिन विच कई घंटे रोंदी कढ देंदे ने, हाल पारिया खाए मर गए खाए लुटे गए, ते कुछ ऐसे ने जेड़े दिन विच पाप कर दे दिन समा कढ देंदे ने कुछ हिस्सा। तीजे ऐसे ने जेड़े गवांडी दा सुख वेख के आहा लैंदी अद्धा दिन कढ देंदे ने, जदों की आया गल परत परत के फिर उहदी शुरू कर ली। उन्हें एक शब्द कहा मैनू बड़ा चंगा लगा, कहिंदा कुछ रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई, कुछ रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई, कुछ सोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई, मंजिल पे जाने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। राह एक ही बाबे ने दिता है कि इत मार्ग चले भाइयड़े बदलिए ना, गुर कहे सो कार कमाए जियो, त्यागे मन की मतड़ी वे सारे दूजा पाओ जियो, यूं पावे खर दरसावड़ा न लगे तत्ती वाओ जियो। तन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह कृपा करो, कमाइया वालियां नूं असी याद पै करने हैं, उन्हां दे जीवन विचों किते किनका मात्र सानू सच्ची मुची सिखी कमान दी दात बख्श दियो। इनियां कु बेनतियां स्वीकार करनियां जी, खोईयां पुल्लां बख्श देनियां आप समूह संगत दा, सतगुरु जी दा और महंत साहिब जी दा, महंत प्रतपाल सिंह जी, बाबा अजीत सिंह जी, समूह गुरमुख प्यारे कीर्तनीए भाई प्यारा सिंह होनी भाई सरवण सिंह होनी मिलदे सन, बड़ी बारी कहा उथे आओ पर सबब बनिया दाते दा। आप संगत दे दर्शन दारे हुए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

जे विद मन को संसार चूके पावनिद पार परों जन्म पाए कछ पलो न कीनो ताते अधक डरों गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजियो पस जो उदर भरों कहो नानक प्रभ बिरद पछानो

0: ओट,
1: हर कह नामो दरे जन कोट,
0: हर जस करत संपति निराप,
1: हर हर औकत साध कमात,
0: हर जन कह हर नाम निधान,
1: और ब्रह्म जन कीनो दान,
0: मन तन रंग रते रंग एक,
1: नानक जन कह व्रत भविक,
0: हर का नाम जन को मुक्त जुगत,
1: हर कह नाम जन को तृप्त भुगत,
0: हर का नाम जन का रूप रंग,
1: हर नाम जपत कब परे न भंग,
0: हर का नाम जन की वडियाई,
1: हर कह नाम जन शोभा पाई,
0: हर का नाम जन को भोग जोग,
1: हर नाम जपत कछ नाहि बियोग,
0: जन रासा हर नाम की सेवा,
1: नानक पूजै हर हर देवा,
0: हर हर जन कै मालिक जीना,
1: हर तन जन को आप प्रभु दीना,
0: हर हर जन कै ओट स्थानी,
1: हर प्रताप जन अवर न जानी,
0: ओत ओत जन हर रस राते,
1: सुन समाद नाम रस माते,
0: आठ पहर जन हर हर जपै,
1: हर का भगत प्रकट नहीं छपै,
0: हर की भक्त मुक्त बहु करे,
1: नानक जन संग के ते तरे,
0: पार जाते हो हर को नाम,
1: राम तेन हर हर गुण गाम,
0: सब ते उत्तम हर की कथा,
1: नाम सुनत दर्द दुख लथा,
0: नाम की महिमा संतरित बसै,
1: संत प्रताप दुर्त सब नसै,
0: संत का संग वट भागी पाई है,
1: संत की सेवा नाम ते आई है,
0: नाम तोल कश अवर न होए,
1: नानक गुरमुख नाम पावे जन को श्लोक,
0: बहु शास्त्र बहु सिमृति प्रेखे सर्व टंडोल,
1: पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल, अष्टपदी
0: जाप ताप ज्ञान सब ध्यान,
1: शास्त्र सिमृत विख्यान,
0: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया,
1: सकल त्याग बन मध्ये फिरिया,
0: अनक प्रकार किए बहु जतना,
1: उन दान हूँ मैं बहु रतना,
0: शरीर कटाई हूँ मैं कर राती,
1: व्रत नेम करे बहु भाती,
0: मही तुल राम नाम विचार,
1: नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार,
0: नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै,
1: महा उदास तपी सर थीवै,
0: अगन माही हुमत प्राण,
1: कनक हसब है भरपूर दान,
0: न्यौली कर्म करे बहु आसन,
1: जैन मार्ग संजमय साधन,
0: निमक निमक कर शरीर कटावे,
1: तो भी हम मैं मैल न जावे,
0: हर के नाम सम सरकश नाही,
1: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे,
0: मन कामना तीर्थ दे छुटै,
1: गर्भ गुमान न मन ते हुटै,
0: सोच करे दिन अर रात,
1: मन की मैल न तन दे जावे,
0: इस देही को बहु साध न करे,
1: मन ते कभु न बिखिया तरे,
0: जल धोवे बहु देह अनीत,
1: सत कहा होए काची भीत,
0: मन हर के नाम की महिमा ऊच,
1: नानक नाम उदरे पतत बहमूच,
0: बहुत सियाणप जमका भव व्यापै,
1: नानक जतन कर तृष्ण न थापै,
0: एक अनेक अगन नहीं बुझै,
1: ओटो पावदर गैने सिजै,
0: छूट सुनाही ऊब पयाल,
1: मोहे व्यापै माया जाल,
0: अवर करतूत सगली जम डानै,
1: गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै,
0: हर का नाम जपत दुख जाए,
1: नानक बोलै सहज सुभाए,
0: चार पदार्थ जे को मांगै,
1: साध जना की सेवा लागै,
0: जे को अपना दुख मिटावै,
1: हर हर नाम रिदा सदगावै,
0: जे को अपनी शोभा लोरै,
1: साध संगे हम मैं शोरै,
0: जे को जन्म मरण ते डरै,
1: साध जना की शरणी परै,
0: जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा,
1: नानक ताकै बल बल जासा,
0: सगल पुरख मैं पुरख प्रधान,
1: साध संग जाका मिटे अभिमान,
0: आप सुको जो जाने नीचा,
1: सहु गनिया सब ते ऊंचा,
0: जाका मन होए सकल कीरीना,
1: हर हर नाम तिन कट कट चीना,
0: मारे अपने ते बुरा मिटाना,
1: देखे सगल सृष्ट साजना,
0: सुख दुख जन सम दृष्टेता,
1: नानक पाप कौन नहीं लेता,
0: निर्धन को धन तेरो नाओ,
1: निथावे कौन तेरा था,
0: नमाने को प्रभ तेरो मान,
1: सगल घटाको देवो दान,
0: कर्म करावन हार स्वामी,
1: सगल घटाके अंतर जामी,
0: अपनी गतमित जानो आपे,
1: आपन संग आप प्रभ राते,
0: तुमरी उस्तत तुम ते हो,
1: नानक अवर न जान सकोए,
0: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म,
1: हर को नाम जप निर्मल कर्म,
0: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया,
1: साध संग दुर्मत मल हिरिया,
0: सगल उद्यम में उद्यम भला,
1: हर का नाम जपो जी सदा,
0: सगल वाणी में अमृत पानी,
1: हर को जसन वसन बखानी,
0: सगल थान ते हो उत्तम थान,
1: नानक जे कट वसे हर नाम श्लोक,
0: निर्गुण यार एन्यास, प्रभ सदा संभाल,
1: जिन किया तिस जीत रख, नानक निभहिना, अष्टपदी
0: परमैया के गुण चेत परानी,
1: कवन मोहते कवन दृष्टानी,
0: जिन तू सास सवार सिंगारिया,
1: गर्भ अगन में जिने उबारिया,
0: बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध,
1: पर जोवन भोजन सुख सूद,
0: बिरध पया ऊपर साख सैन,
1: मुख पया हो बैठ को दैन,
0: एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै,
1: बख्श ले हो तो नानक सीजै,
0: जय प्रसाद धर ऊपर सुख बस है,
1: सुत भरात नीत बनता संग हसै,
0: जय प्रसाद पीवै शीतल जला,
1: सुखदाई पवन पाव के अमुला,
0: जय प्रसाद भोगै सब रसा,
1: सगल समग्री संग सात बसा,
0: दीने हस पाम करन नेत्र रसना,
1: इसे त्याग अवर संग रचना,
0: ऐसे दोख मूड अंध व्यापे,
1: नानक काड लियो प्रभ व्यापे,
0: आदि अंत जो रखनहार,
1: ऐस्यो प्रीत न करे गवार,
0: जाकी सेवा नव नित पावे,
1: ऐस्यो मूडा मन नहीं लावे,
0: जो ठाकुर सर सदा हजूरे,
1: जाको अंधा जानत दूरे,
0: जाकी टहल पावे दरगाह मान,
1: इसे बसारे मुग्धा जान,
0: सदा सदा एव भूलनहार,
1: नानक रखनहार अपार,
0: रतन त्याग कौडी संग रचै,
1: साच छोड़ झूठ संग मचै,
0: जो छडना सो अस्थिर कर मानै,
1: जो होवन सो दूर प्राणै,
0: छोड़ जाए तिस का श्रम करे,
1: संग सहाय तिस पर हरे,
0: चंदन लेप उतारे धोए,
1: कर तप प्रीत भसम संग होए,
0: अंध कूप में पतत बिकराल,
1: नानक काढ लियो प्रभ दयाल,
0: करतूत पशु की मानस जात,
1: लोक बचारा करे दिन रात।

0: एक अंतर मल माया
1: शबनाए कशकरे छपाया
0: बाहर ज्ञान ध्यान इशनान
1: अंतर व्यापै लोप समान
0: अंतर अगन बाहर तन स्वाह
1: गल पात्र कैसे तर अथा
0: जा कै अंतर बसै प्रभ
1: आप तेजन सहर समाज
0: सुन अंधा कैसे मार्ग पावे
1: कर गए लहो ओढ़ निभावे
0: कहां बुझारत बूझे डोरा
1: जिस कहिया तो समझे पूरा
0: कहां विष्ण पद गावे गोंग
1: जतन करै तो भी सुर भंग
0: पिंगल पर्वत पर भवन
1: नहीं होत उहा उस गमन
0: करतार करना मैं दीन बेनती करे
1: नानक तुमरी कृपा तरै
0: संग सहाई सो आवे न चीत
1: जो बराई ता स्यों प्रीत
0: बलुआ के गृह भीतर बसे
1: अंत केल माया रंग रसै
0: दृढ़ कर्मा ने मन प्रतीत
1: काल न आवे मूढ़े चीत
0: बैर विरोध काम क्रोध मोह
1: झूठ प्रकार महा लोभ त्रोह
0: याहू जुगत बिहाने कई जन्म
1: नानक राख लिहो अपन कर कर्म
0: तू ठाकुर तुम पै अरदास
1: बिन सब तेरी रास
0: तुम मात पिता हम बारक तेरे
1: तुमरी कृपा मैं सुख घनेरे
0: कोई न जाने तुमरा अंत
1: ऊचे ते ऊचा भगवंत
0: सगल समग्री तुमरा सूत्रधारी
1: तुमते हो सो आज्ञाकारी
0: तुमरी गति

0: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵਹੇ
0: ਜਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ
0: ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋਤ ਸਰਸਨਾ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ ਧਿਆਨ ਜੋਗ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵਹੇ
0: ਜਿਸੇ ਤਿਆਗਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕ ਜਸ ਕਵੀ ਜੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਲ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ
0: ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ
0: ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਰੱਬ ਦੀ ਜਪਤ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ
0: ਨਿਬਲਾ ਬੁੱਤ ਸਰਾਮ ਸਨੇਹੀ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ
0: ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ
0: ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ
0: ਮਨ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀਜੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਾਰੀ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੋ ਕਭੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ
0: ਰਾਗ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ
1: ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬੰਤ ਬਣਾਈ
0: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸਤਿ ਸਹਿ ਧਿਆਈ
1: ਇਸੇ ਧਿਆਈ ਜੋ ਏਕ ਲਖੈ
0: ਨਿਹਾਂ ਉਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਰੱਖੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤਾਰੀ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ
0: ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ
0: ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨੇਹੀ ਕਰਨ ਨਾਦ
0: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖਿਆ ਵਿਸਮਾਦ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ
0: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਵਸਨਾ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸ ਕਰ ਚਲਹੇ
0: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵਹੇ
0: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ
1: ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਬਰਕਤ ਲਾਗੋ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਦੇਹ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ
0: ਇਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ
0: ਦੇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਓ ਰਾਜ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ
1: ਆਪ ਜਪਾਈ ਜਪੈ ਸੋਨਾ
0: ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ
1: ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤੂਤਮ ਹੋਏ
1: ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ
0: ਆਪੋ ਕਸ਼ਨ ਕਿਨੂੰ ਲਿਆ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲੱਗੇ ਹਰ ਨਾਥ
0: ਨਾਨਕ ਇਨਕੇ ਕਸ਼ੂ ਨਹਾਥ ਸਲੋਕ
1: ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸਮੁਖਤਾ ਹੋਏ
0: ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤਨ ਬੇਰਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਏਕੋ ਉਪਰ ਜਤਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਣੀ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਹਿ ਸਮਾਨੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਕਤ ਹੂੰ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਤਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਭ ਮੀਤ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸੋ ਨੀ ਬੈਰ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਜੈਸਾ ਵਿਆਪ
1: ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਪੜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਿਆਈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬ ਹੂੰ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਿਰ ਪਹੁੰਚੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਧਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ
1: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੋ ਬਾਸੁਰ ਦੇਵਾ
1: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਗਲ ਜਨਮ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ
1: ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਬਸੈ
0: ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਣ ਰਸੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਉ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮਿੱਠਾ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਘਰ ਘੜ ਜੀਠਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿੱਟੇ ਸਭ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੈ
0: ਜਿਤਾ ਸੁਣੈ ਤਿਤਾ ਬਖਿਆਨੈ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇਹ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ ਸਲੋਕ
1: ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ
0: ਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ
1: ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ
0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
0: जैसे जल में कमले लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सोक
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीर एक
0: ज्यो बसदा को खुदै को चिंदन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक ज्यो भाव का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
0: मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जन प्रभु आप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उप्रयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी दे तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम प्रवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगुद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का विता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने थे
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदा अखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी अपनकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और तारै जो अंतर नाम सर्व में देख भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श
1: क्षत्रिया रूप न देखे नेत्र
0: साधक टहल संत संग हेत
1: कर्णन सुने काहू की निंदा
0: सत्य जाने आप को मंदा
1: और प्रसाद मिथ्या पर हर है
0: मन की वासना मन ते टर
1: इंद्रिय जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विष्ण की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कर्त हो वह ने कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंश
0: केवल भगत कीर्तन संग रच
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर हो वट कृपाल
1: आप दृढ़ अबरह नाम जपावे
0: नानक को वैष्णो परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मन से दिन से सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पे विष्ण प्रीत
1: हरि चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबोध है
0: राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जो नयावे
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल
0: सुख मै जाने स्थूल
1: वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा देश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: जो वरना में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: सा संग पावे जन कोए
1: कर कृपा अंतर उतार है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: काहू जुगत कितै न पाइया धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निट निट हर जान
0: सो दास दरगा परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सोजी पर
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: रब की आज्ञा आत्म हितावै
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: ऐसा हक तैसा उस सोग
0: सदा अनंत नहीं वियोग
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: ऐसा अमृत तैसी बिकाटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताए साई जुगत
0: नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाव
0: जित जित कर रखे तैसा तिन नाम
1: आपे करन करावन जोग
0: भावे सोई पुन होग
1: असरियो आप होए अंत तरंग
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक
1: उस्त करे अनेक जन अंत न पारावार
0: नानक रचना प्रभ रची बहु विद्यनक पर प्रकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी
0: कई कोट आचार व्यवहारी
1: कई कोट भय तीर्थ वासी
0: कई कोट बन प्रमय उदासी
1: कई कोट बीरते स्रोते
0: कई कोट तपीसर होते
1: कई कोट आत्म ध्यान धारी
0: कई कोट कब काव विचारे
1: कई कोट नापतन नाम त्यावहे
0: नान करते का अंत न पावे
1: कई कोट भय अभिमानी
0: कई कोट अंध अज्ञानी
1: कई कोट कृपण कठोर
0: कई कोट अभिग आत्म ने
1: कोर कई कोट पर दर्प को हिरहे
0: कई कोट पर दुख न करे
1: कई कोट माया श्रम माहे
0: कई कोट पर देश परमा है
1: जित जित लाभ होते तित लगना
0: नानक करते की जाने करता रचना
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी
0: कई कोट राजे रस भोगी
1: कई कोट पंखी सर्प उपाए
0: कई कोट पात्र बृख न बजाए
1: कई कोट पवन पानी बै संतर
0: कई कोट देश भूमंडल
1: कई कोट शशि सूर नक्षत्र
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिर छत्र
1: सगल समग्री अपने सूत धार है
0: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है
1: कई कोट राजस ताम सातक
0: कई कोट वेद प्राण स्मृति अर शास्त्र
1: कई कोट की रतन समुंद
0: कई कोट नाना प्रकार जंत
1: कई कोट की ये चिर दीवे
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे
1: कई कोट जख के निरपिशाच
0: कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच
1: साते नेरा सब हूं ते दूर
0: नानक आप लिप्त रे आप प्रभूर
1: कई कोट पाताल के वासी
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है
0: कई कोट बहुत जोनी फिर
1: कई कोट बैठ सही खाहे
0: कई कोट काले थक पाहे
1: कई कोट की ये धनवंत
0: कई कोट मैं चिंत
1: जय जय भाणा तह तह राखे
0: नानक सब कुछ प्रभु के हाथे
1: कई कोट भय वैरागी
0: राम नाम संग तिन लिव लागी
1: कई कोट प्रभु को खोजंते
0: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते
1: कई कोट दर्शन प्रत्यास
0: जिनको मिलियो प्रभु विनाश
1: कई कोट मांग है सत्संग
0: पार ब्रह्म तिन लगा रंग
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न
0: नानक तेजन सदा धन धन
1: कई कोट खानी अरखंड
0: कई कोट आकाश ब्रह्मंड
1: कई कोट होए अवतार
0: कई जग की नु विस्तार
1: कई बार पसरियो पासार
0: सदा सदा एक एक अंकार
1: कई कोट कीने बहु भांत
0: प्रभु महे समात
1: ताका अंत न जाने कोई
0: आपे आप नानक प्रभु सोए
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास
0: जिनहो वत्या तुम प्रगास
1: कई कोट तत्व के देते
0: सदन हर एको नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीव है
0: अमर भय सद सद ही जीव है
1: कई कोट नाम गुण गाव है
0: आत्म रस सुख सहज समावे
1: अपने जन को साथ साथ संभारी
0: नानक हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक
1: करण कारण प्रभु एक है दूसर नाही कोई
0: नानक तिस बलहार ने जल थल मई अल सोए अष्टपदी
1: कर्ण करावन करना जोग
0: जोत सुभावे सोई होग
1: जिन में ताप उताप नहारा
0: अंत नहीं किस पारा वारा
1: हुक्मे धार अधार रहावे
0: हुक्मे उपजे हुक्म समावे
1: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार
0: हुक्मे अनेक रंग प्रकार
1: कर कर दिखे अपनी वडियाई
0: नानक सब में रहा समाई
1: रब भावे मानो गत पावे
0: रब भावे ता पात्र त्रावे
1: रब भावे बिन सास ते रखे
0: रब भावे ता हर गुण पाखे
1: रब भावे ता पत उधार है
0: आप करे अपन विचार है
1: दोहा श्रेया का आप स्वामी
0: खेले से अंतर जामी
1: जो भावे सो कार करावे
0: नानक दृष्टि और न आवे
1: ओ मनुख ते क्या होए आवे
0: ज्योत स्वभाव है सोई करावे
1: इसके हाथ होए ता सब पिछले
0: ज्योत स्वभाव है सोई करे
1: मन जानत बिठिया मह रचे
0: जे जानते अपने आप बचे
1: धर्मे भूला दह दिस धावे
0: नमक माही चार कुंड फिर आवे
1: कर कृपा जस अपनी भक्त दे
0: नानक ते जन नाम मिले
1: छिनवे नीच कीट को राज
0: पार ब्रह्म गरीब नवाज
1: जां का दृष्ट कछु न आवे
0: जिस तत्काल दर दिस प्रगटावे
1: जां को अपनी करे बख्शीश
0: ताका लेखा न गणे
1: जीओ पिंड सब तिसकी रास
0: कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास
1: अपनी बनत आप बनाई
0: नानक जीव देख बढ़ाई
1: इसका बल ना ही इस हाथ
0: कल करावन सर्व को नाथ
1: आज्ञाकारी बपरा जियो
0: जोत स्वभाव है सोई फन थी
1: कब हूँ ऊंच नीच मैं बसे
0: कब हूँ सोग हर करंग हस है
1: कब हूँ निंद चिंद व्यवहार
0: कब हूँ उबक आस प्याल
1: कब हूँ बेता ब्रह्म विचार
0: नानक आप मिलावन हार
1: कब हूँ नृत करे बहुभांत
0: कब हूँ सोए रहे दिन रात
1: कब हूँ महाक्रोध विकराल
0: कब हूँ सर्व की होतरवाल
1: कब हूँ होए वह बड़
0: प्रभु भिखारी नीच का साजा
1: प्रभु आप कीर्त में आवे
0: प्रभु भला भला कहावे
1: जो प्रभु राखे ते भी रहे
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे
1: प्रभु होए पंडित करे बख्यान
0: प्रभु मोहन तारी लावे ध्यान
1: प्रभु तट तीर्थ स्नान
0: प्रभु सिद्ध साधक मुख ज्ञान
1: प्रभु पीठ हस्त पतंग होए दिया
0: अनक जोन परमे परमिया
1: नाना रूप जो स्वांगी दिखावे
0: जो प्रभु भावे तिवे न जावे
1: जो भावे सोई होए
0: नानक दूजा अवर न कोए
1: प्रभु साध संग ते पावे
0: उस स्थान ते बौर न आवे
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश
0: उस स्थान का नहीं विनाश
1: मन तन नाम रते एक रंग
0: सदा बसे पार ब्रह्म के संग
1: ज्यों जल मह जल आए कटाना
0: ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना
1: मिट गए गवन पाए विश्राम
0: नानक प्रभु के सद कुर्बान श्लोक
1: सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले
0: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नक पाती होवत स्वान
1: जो जान है मैं जो बनवंत
0: सो होवत विष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन कुम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: ज्ञान की है मुक्ति अगै सुख पावे
1: धनवंता हो कर गर्भावे
0: तरण समान का चंग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: और भीतरता का हुए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: मैं हो जाए पसमंत
1: सेना बदे आप हंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हों तारी
0: शरम पावे सकले बरथारे
1: अनक तपस्या करे हंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट में आवे
1: सर्व की रेन जा का मन होए
0: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: जब इस को सुख नाही कोए
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब धारे को बैरी मीत
0: तब लग निश्चल नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: प्रभु कृपा ते बंधन टूटे
0: गुरु को साधना नानक हो छूटे
1: सहस कटे लग को उठतावे
0: रतन आवे माया पछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नैत बतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सुपन मनोरथ फिरते सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभ सोए
1: जो किस पीनो सो अपने रंग
0: तब ते दूर सब हूँ कै संग
1: दूजे देखे करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न बिनसे आवे न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेशे समझे आप
0: आपे रचिया सब के साथ
1: आप कीनो अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पोस्ते भिन्न कहो किस होए
0: अंत अंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद किने बखियानी
1: सच सच सत सब कीना
0: कोट मदय किने बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनुरूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कटकट सुने सरवण बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत सरन जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत के दुखन आरजा कटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत होए मलीन
0: संत के दुखन शोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे न कोई
0: संत के दुखन थान भ्रष्ट होए
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जले
0: संत के दुखन सब को छले
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाउ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी गत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज तेहीन
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा अपवित
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लग
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाओ
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उद्यान परमाइए
0: संत का दुखी उजड़ पाइए
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृतक की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस ना ही
0: अपन बीजा पे ही खाहे
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इउं बिल लाए
0: जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: जो बुआड़ तेरे खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: किरत निंद का तुर ही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइए
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए
1: संत के दुखी की पूजा न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्टे कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया किरत न मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रबी उसत कर हो दिन रात
0: तिसे त्यागो सास ग्रास
1: सब कछ वर्ते तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वडपा की नानक जन से श्लोक
1: तज हो सियान पुसुर जन हो सिमर हो हर हर राय
0: ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਉ ਜਾਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ
0: ਜੀਵਨ ਪਾਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ
1: ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ
0: ਪਉ ਨ ਤਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ
1: ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ
0: ਨਾਨਕ ਟੈਕਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹਾਥ
1: ਜਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ
0: ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ
0: ਸਦਾ ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ
1: ਨੈਨੋ ਪੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ
0: ਆਦਰ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ
1: ਵਡ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
0: ਚੇਤਨ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੁਖੀ
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ
0: ਤੁਤ ਕੀਓ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ
0: ਨਾਨਕ ਤਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਣੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
0: ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ
1: ਧਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ
0: ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਨ ਕੀ ਫਸਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ
0: ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਚਿਤੇ ਆਵੈ
0: ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵੈ
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ
1: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ
0: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਪੂਜਿਆ
1: ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਸ਼ਮੂਲ
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਕਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ
1: ਨਹਿ ਕਿਸ਼ਚਨ ਮੈਂ ਨਹਿ ਕਿਸ਼ ਮਰੈ
0: ਆਪਣੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ
1: ਆਪਣ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ
0: ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾ ਬਿਉਥਾ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸ਼ ਖੰਡ
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਲੱਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ
1: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਪਾਵੰਤ
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਟ ਭਾਗੈ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰ ਮਾਨ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਸੰਗ
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਈ
0: ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ
1: ਜਪ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤੇ ਸਮਾਹੀ ਸਮਾਏ
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣਿਆ।

0: नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी
1: पूरे गुर का सुन उपदेश
0: सा ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमरो गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग हो त्रंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहो
0: साथ संग अग्न सागर तरहो
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुर पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का एह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल एह रतन
1: सुनत कमाप्त होत उदहार
0: आप त्रैलोकै निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजै
0: सुन सुन अनंत करे प्रभ गाजै
1: प्रगटे गोपाल महांत कै माथे
0: नानक उदरे तिनकै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभ आप मलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण हो ही सेवक की सेवा
1: आज जंजाल विकार से रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभधारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्थित करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सोहोत निधान
1: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊत पाए अस्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रित नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता
1: ए फल तिस जन कै मुख भने
0: गुरु नानक नाम बचन मन सुने
1: एहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोबिंद भगत कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटे
1: जाके मस्तक कर्म प्रपाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवारै
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से पै भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सत्य ऊचता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम।

श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वे विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंगे फेरे जंत विस्माद पौन समाद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद शिव तुस्माद सलाह विस्माद उज्जड़।

उड़ उड़ रावा चाटे पाए देखे लोक शेकर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पिछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो निरंकार सच नाम।

जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नीज सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दियाइए को रहना भरिए पाइए को रहना भरिए पाइए।

दे मंगे से सगुना छोकरे संसार चोरा जारा ते कुड़िया रखा रबा बेकार एक होंदा खा चले जाओ तिना बिकाई कार जल था जिया पुरी।

पौड़ी बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की दिशन तो खी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे ते धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

दीपा लोहा मंडला खंडा बिरपंडहा अंडू जेरी जुत पजा खानी सेक जा सोमत जाने नानका सारा मेरा जनता नाग जंतु पाए कैसा माले सबनहा जिन करते करना किया चिंता भी करनी ता सो करता चिंता।

बौड़ी सच्चा साहेब एक तुझ ने सचो सच बरताया, जिस तू देहत से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच ना जाननी मन मुख जन्म गवाया, विच दुनिया का है आया, विच दुनिया

0: महला पहला पर गड्डी लदिए पर भरिए साथ पर बेड़ी पाइए पर गड्डिए खास पढ़िए है जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल और हो में चखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

0: धुआ पूरा तपे का सत गिर धुआ हो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर धुआ हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर समय सच में अच्छा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे सुरख पुठानी अमल किया
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाव पद करनी।

ओडिशा महोदय कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण ता कसम का मैल पाए सी कसम पावे सो

पौरिया पहिकरणा कियो कला पहिता धारिये देखे है किता अपना तर्क चिपकी सारिये जो आया सो चलसी।

इन्हि प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज धर्यो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लखियो हर अवाची दिशा मह, काहू पछाह को शीस निवायो। कुब तानक पूजत है पास, कुमर तानक पूजन तायो। कूर क्रिया और जो सभी जाग, श्री भगवान को भेद न पायो। कुब तानक पूजत है पास, कुमर तानक पूजन तायो। कूर क्रिया और जो सभी जाग, श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवि उबाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हाथ दया रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तव चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सब तुम कहवहो। आप हाथ दया मोहे बचावहो, सुखी बसै मोरो परवारा। सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दया करिये। सब बैरन को आज संगरिये, पूर्ण होए हमारी आशा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं। जो अवर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हास दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुजु करी हो रच्छा। राख ले हो मुहे राख नहारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बान दुष्टन के हंता, तमहो पुरी चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाश, सकल काल का किया तमाशा। जामन

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर पछाने, कट कट के पढ़ पढ़ की जाने, जब उद कारख करा करतारा, प्रजा तर तब देह अपारा, जब या कारख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह तार सब हूं, जेते बदन सृष्ट सब तार है, आप अपनी बूज उचार है, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंका निरभका निर्लंब, याद अनिल अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत पेदा, जागो पेव न पावत बेदा, ताकौ कृपाहन अनुमानत, महामूढ़ काश भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा से, निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बारनत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाय पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज सेत दिकीनियत, पुज खान बाहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट भयो संकरी कैठा, सिगरी सृष्ट दिखाय चंपावे, आज जुगाद स्वरूप स्वयं पाव, अब रच्छा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रणकाता, जे आस तुज तब सरणी परे, तनके दुष्ट दुख तुह मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह ऐह, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो, ताके ताप तनक मह हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शास व सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारू कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा, खाड़ग के ता मैं सरन तिहारी, आप हाथ दै लेहो उबारी, सर्ब ठाउर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री अस्तुजा पहे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांशत फल पावै सोई, दुख न तसा व्याप्त कोई, अड़ेल सुनै गुंग जो याहे सो रसना पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पहु निकटा, ना तिन नर के रह, हो जो या की एक बार, चाओ पाई को कह चाओ पाई, संबत सत्रह सहस पणिज, अर्ध सहस पुण तीन किहिज, पादरव सदी अष्टमी रविवारा, तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया,

मात एक न मानियो। सिमरत शास्त्र वेद सब बह भेद कहें हम एक न जानियो। श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो साब तो हे बखाने दोहरा।

मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गल्ला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, करता तेरा सब किश है, जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे।

पछोताई है। सतगुरु का उपदेश सुन तू, होवै तेरे नाले, कह नानक मन प्यारे, तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किने तेरा, अपना आप तू जान हे। जी अजंत सब खेल तेरा, क्या को वाख वखाणा, आख ता वेखा है सब तू है, जिन जगत उपाया, कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत न पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीने, सच्चा मन वसाया। जी अजंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लाभ लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया। कह नानक जिसनु आप तुठा, तन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता, केरी बिखम मार्ग चलना। लाभ लोभ अहंकार तज त्रिसना, बहुत नाही बोलना, कन्ने हो तिखी वाल हुनी की, एत मार्ग जाना। गुर प्रसाद जनी आप तजिया, हर वासना समाणी, कह नानक चाल भगता, जुग हो जुग निराली। जिहो तू चलाए हो तिव चलह स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाए हो तिव चलह जिना मार्ग पावहे। कार कृपा जिन नाम लाए, से हर हर सदा त्यावहे, जिस नो कथा सुनाए हे अपनी, से गुरुद्वारा सुख पावहे। कह नानक सचे साहिब, ज्यो भावै तिव चलावहे, एहो सोहिला शब्द सुहावा, सबद सुहावा सदा सोहिला, सतगुरु सुनाया, एहो तनकै मन वसिया, जंतर हो लिखिया आया। एक फिर है कनेरे करह गल्ला, गली किने न पाया, कह नानक सबद सोहिला, सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया, पवित माता पिता कुटुंब सहज से, पवित संगत सबाइया, कह दे पवित सुन दे पवित, से पवित जिनी मन वसाया, कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमे सहज न उपजै, बिन सहजै सहसा न जाए, नह जाए सहसा कितै संजम, रहे कर्म कमाए। सहसा जीओ मलीन है, कित संजम तोता जाए, मन तो वहो शब्द लग हो, हर सो रह हो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एह सहसा इव जाए। जी यह मैले बाहर हंदरमल, बाहर हंदरमल जी यह ता मैले, तिनी जन्म जूवै हारिया। एह तिसना वड्डा रोग लगा, मरण मनहो विसारिया, वेदा मह नाम उत्तम सो सुनहे नाही, फिरहे जो बेतालिया। कह नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिनी जन्म जूवै हारिया। जी हंदरमल बाहर हंदरमल, बाहर हता निर्मल जी हंदरमल, सतगुर ते करनी कमाणी। कूड़ की सोए पहुचा नाही, मनसा सच समाणी, जन्म रतन जिनी खटिया, भले सेवन जारे, कह नानक जिन मन निर्मल, सदा रहे गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जी हो रह गुर नाले। गुर के चरण हृदय ते आए, अंतर आत्मा समाले, आप छड सदा रहे परणै, गुर बिन अवर न जाने कोए, कह नानक सुनहु संत हो, सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वे मुख होवै, बिन सतगुर मुगत न पावै, पावै मुगत न होर थै, कोई पुछह बिबेकिया जाए। अनेक जूनी परमे आवै, वेण सतगुर मुगत न पाए, पर मुगत पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखह, वेण सतगुर मुगत न पाए, आवह सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावह सच्ची बाणी, बाणी ता गावह गुरु केरी, बाणी आसर बाणी, जिन कौ नदर कर्म होवै, हृदय तना समाणी,
पीवह अमृत सदा रहो हर रंग जपहो सारिग पाणी कह नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजहो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित करहे रसना कहया कछु न जानी चेत जिन का हिर लया माया बोलन पए रवाणी कह नानक सतगुरु बाजहो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन तित मन लागाए हो आसमाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव सकत आप उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए आप वेख गुरमुख किसै बुझाए तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन नवसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एक सस्यों लिबलाए कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार न जानी तत्तै सार न जानी गुरु बज हो तत्तै सार न जानी तिही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रैन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोलहे अमृत बाणी कह नानक सो तत् पाए जिसनु अन्न दिन हर लिव लागै जागत रैन विहानी माता के उदर महा प्रत पाल करे सो क्यों मनहो विसारी है मनहो क्यों विसारी है ए वडदाता जे अगन मह आहार पहुंचावे ओसनो केह पोहे ना सकी जे सुनाओ अपनी लिवलावाए अपने लेवे आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कह नानक ए वडदाता सो क्यों मनहो विसारी है जैसी अगन उदर में है तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जे ही करता खेल रचाया जात इस भाणा ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी त्रिसना माया अमर वरताया एह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जना लिव लागी तिने विचे माया पाया हर आप अमुलक है मोल ना पाया जाए मोल ना पाया जाए किसै विटह रहे लोक बिल लाए ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो सिर साव पीऐ विच हो आप जाए जिसदा जीओ तिसमत रहै हर वसै मन आए हर आप अमुलक है भागत ना के नानका जिन हर पल्लै पाए हर रास मेरी मन वणजारा हर रास मेरी मन वणजारा सतगुर तेरा जानी हर हर नित जपे हो जिया हो लाहा खटे हो दिहाड़ी एहो तन तना मिलिया जिन हर आपे भाणा कह नानक हर रास मेरी मन होवा वणजारा ए रसना तू अंदर सदाच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए और कहता जिचर हर रस पल्लै न पाए हर रस पाए पल्लै पिए हर रस बहुर न तरसना लागै आए एहो हर रस करमी पाई ऐ सतगुर मिलै जिस आए कह नानक होर अन रस विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तम मह जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुझ विच ता तू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जी उपाए जग देखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होवा चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए
ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪਾਏ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਰ ਜਾਪਾਏ। ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ

इस जग में आए कह क्या तुझ कर्म कमाया के कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन ने वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक एहो शरीर प्रवान होवा जिन सतगुर सिओ चित लाया हे नेत्र मेरे हो हर तुम मह जोर तरी हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नजरी हर निहालिया एहो विस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझे आ जा वेखा हर एक है हर बिन अवरना कोई कह नानक एह नेत्र अंध से सत गुर मिले दे बदृष्ट होई ए श्रवण हो मेरे हो साचा सुनने नो पठाए साचा सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनहु सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया होवा रसना रस समाणी सच अलख विडाणी ताकि गात कही ना जाए कह नानक अमृत नाम सुनहु पवित्र होवहु साचा सुनने नो पठाए हर जी गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ दुवारे प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना दसवा द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाव नव निध तिसदा अंत न जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया एहो साचा सोहिला साचा घर गावहो ता सोहिला घर साचा जिथे सदा सच त्यावहे सचो त्यावहे जा तुद भावहे गुरमुख जना बुझावहे एहो साच सबना का खसम है जिस बगसे सो जान पावहे कह नानक साच सोहिला

मन का लोभ है, लोभ सीमित नहीं है, नहीं है। ज्ञानपूर्वक सर्वन करना। तन दिया लोड़ा कोई बहुत ज्यादा नहीं, जो पशुआ भी लोड़ा ने वही साड़ी लोड़ है। पर तन की लोड़ नो जग मन लोभ बना रहना है। इधर एक निका जहां मैं उदाहरण दे दिया, जैसे भोजन की भुख है तो ठीक है, मनुख दो रोटियां तीन रोटियां खा लेगा, चलो चार पांच खा लेगा, त्रिपत हो गए, तन ते रज गए, तन ते राजा हो गए। लेकिन मन कहता है स्वाद ते आ रहा जे और खाई, भुख नहीं है ये खा रहे है, ये लोड़ नहीं है लोभ बन गया, ये तन की लोड़ नहीं है ये मन का लोभ बन गया। इस वास्ते कई तो कहते ने की करिए, पेट ते भर गया पर मन नहीं भर गया, मन भरदा भी नहीं। क्यों? तन दिया लोड़ा मन दिया लोड़ा ही नहीं है, पर तन दिया लोड़ा नू भ्रांति करके मन ने अपनिया लोड़ा समझ दे। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा, जैसा मन मन ले पर मन ले। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, जो मन मन लैंदा है वो है, जो मन नहीं मनता वो मन की दुनिया च नहीं है। सवाल यह नहीं है कि वो वस्तु वो हस्ती है या नहीं, सवाल यह नहीं, सवाल यह है मन मनता है कि नहीं। अक्सर मनुख कह देता है पढ़िया तो है पर की करिए मन नहीं मनता, सुनिया तो है पर की करिए मन नहीं मनता, वेख्या तो है पर की करिए मन नहीं मनता। जो मन मनता ही नहीं वो मन का हिस्सा नहीं बनेगा। मन का हिस्सा वही वस्तु वही हस्ती बनती है जिन्हों मन मन लैंदा, मन मन लैंदा, मन पदार्थ नू मन लैंदा परमात्मा नू नहीं मनता, मन परिवार नू मन लैंदा निरंकार नू नहीं मनता। एक बहुत वड्डी सच्चाई है जिन्हों खुले दिल नाल कबूल करना होंदा। मन धन नू मन लैंदा मन धर्म नू नहीं मनता, मन पूरे दे पूरे परिवार नू मन लैंदा संसार नू मन लैंदा मन करतार नू नहीं मनता। जे तुसी आखो साडा मन मनदा है क्योंकि गुरुद्वारे आया, मन मनदा है ताई ते आया, कोई मनुख कह सकदा सी मंदिर जा रहे हैं गुरुद्वारे जा रहे हैं मस्जिद जा रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं जप तप कर रहे हैं कथा कीर्तन सुन रहे हैं मन मनदा है। गुस्ताखी माफ ते माफ कर देना, गुरबाणी इस तरह कहती है कोई लखां करोड़ां च इक अद्धा मन मनता है बाकी नहीं मनता। इस संबंध च मैं दो श्लोक थोड़े सामने रख रहे हैं ताकि गल पूरी स्पष्ट हो जाए। ये दो श्लोक एक ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का, एक भगत सिरमौर श्री कबीर जी का। ये दो श्लोक जिन्हां बाणियां विच हैगे ने उन्हां बाणियां का सिरलेख इको ही है, गौड़ी महला पंजवां बावन अखरी। धन गुरु अर्जन देव जी का इत्थे श्लोक बावन अखरी बाणी का नाम है, गौड़ी श्री कबीर जी बावन अखरी। अखरां दी महिमा दे उत्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने पट्टी लिखी है आसा राग विच, गुरु अमरदास जी ने पट्टी लिखी है आसा राग विच, अखरां दी महिमा दे उत्ते बावन अखरी लिखी है गौड़ी राग विच गुरु अर्जन देव जी ने और गौड़ी राग विच भगत कबीर जी ने अखरां दी महिमा गाई है। क्यों? आवाज ते पशुआ को भी है, कौआ भी काय काय करता है, शेर भी करे है, गऊ भी बोल, पंछी भी चहचहाते हैं। आवाज ते पशुआ को भी है, अल्फाज नहीं है, धुन ते पशुआ को भी है, अखर

प्राण श्वासां दा चलना दिल दा धड़कना खून दा चलना ये अन्नमई कोश दी जिंदगी है। विचारां दा चलना सोचनी दा चलना सिमृति दा चलना ये सूक्ष्म शरीर दी जिंदगी है। पर देखना पेगा विचारां दे च चलदा की है, सोचनी दे च चलदा की है, यादां दे च चलदा की है। कहिंदे ने वासना चलदी है, वासना चलदी है। वासना किस दी? प्रभता दी वासना, पदार्थां दी वासना, रूप दी वासना, ऐ चलदी है। यादां दे च, विचारां दे च, सोचने दे च। ये एक अध्यात्म विचार जिंदगी सारी कर्म कांड च ना लंघ जाए, इस वास्ते मैं ये अर्ज कीता है। ये कथा कीर्तन भी अस्थूल शरीर की लोड़ नहीं है, थोड़े अनमई कोश की पूर्ति इस कथा नाल नहीं होवेगी, कीर्तन नाल नहीं होवेगी, पाठ नाल नहीं होवेगी, जप नाल नहीं होवेगी। अगर इस नाल हो सकती है थले लंगर चलाण की लोड़ नहीं है। ये भजन, ये कथा, ये कीर्तन, ये जप, ये सूक्ष्म शरीर की लोड़ है। ये मनमई कोश की लोड़ है। हुण दूजा नुकता बयान मैं करा। ना समझी दे कारण करके पशु कई दफा नालियां दा गंदा पानी भी पी लेंदे, गलत भोजन भी खा लेंदे। जो नहीं खाना चाहिदा सूअर वह भी खांदा रहिंदा, कुत्ते वह भी खांदे रहिंदे, गलत आहार भी करदे रहिंदे और गंदा पानी भी पींदे रहिंदे। मनुख थोड़ा जिहा सुचेत तन दे तल ते जरूर है, भोजन स्वच्छ होवे, पानी बिल्कुल शुद्ध होवे, फिल्टर शुदा, हवा दे प्रदूषण ना होवे, मन दे प्रति मनुख सुचेत नहीं है। जिवें पशुआं दी आदत बन जाती है गंदा पानी पीण दी, गंदी खुराक खाण दी। महाराज कहिंदे ने फिरदी फिरदी दै दिसा जल पर बत बन राए, जिथे डिठा मृत को इल बहठी आए। इल बड़ी उच्ची उड़दी है, पहाड़ां तो भी उच्ची उड़न लग पैंदी है, बड़ियां ऊंचाइयां नूं छूंदी है। पर जिथे गंदगी पई होवे, पुरुथा सड़िया गलिया, कोई मांस दा निक्का जिहा भी टुकड़ा पे होवे, एकदम उपरों थले आउंदी, बड़ी तेजी नाल आउंदी है और जपटा मारदी है। मनुख दार्शनिक है, फिलासफर है, चिंतक है, बड़ा स्याणा है, बड़ी परवाज है, बड़ी उडारी है, पर सूक्ष्म शरीर चूंकि वासना नाल भरे होया है, वासना प्रभुता दी, वासना रूप दी, वासना पदार्थां दी, ठीक है उडारी बड़ी उच्ची होवेगी, एकदम वासना करके भ्रष्ट हो जाता है। चाहे छोटी दा दार्शनिक है, फिलोसफर है, विचारक है, कितनी सूझबूझ रखता है, की होया इल दी तरह उच्चा पे उड़दा है, विचार बड़े उच्चे ने, ख्याल बड़े उच्चे पेश करता है, लेखनी बड़ी महान है, कविता बड़िया उचिया ने, पर सतगुर कहने उच्चा उड़दे होया इल नू वेख के दे भुलेखे च ना पैना, इहदी मानसिक बिरतियां भी उच्ची ने। इत्थे जिथे डिठा मृतको, कोई मुरदार पिया होवे इल आके बैठ जाएगी। किसे हद तक महाराज कहिंदे ने जो अपना है ही नहीं वह मुरदार खाना है, हक पर आया नानका उस सूअर उस गाय। मोई होई

श्रद्धालु संत भगत अवतार जिस मात्रा दे जगत दे चाहुंदे ने उंगलियां ते गिण सकदे आ भगत बहुत ने। हर कौम दे चोटी दे भगत काफी तादाद दे होए ने। अवतार हर वक्त पृथ्वी ते मौजूद नहीं आउंदा, भगत हर वक्त आउंदे ने। हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राज। जमीन दे ते हर वक्त अवतार नहीं आउंदे, अवतार उस समय आउंदे ने। कवि तुलसी कहंदे ने, जब जब होए धर्म की हानि बाहणे असुर अधम अवमाने, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा हरे कृपा निद सज्जन पीरा। बहुत घोर अपराध पाप छा जाए तो ओ जैसे बहुती गर्मी बारिश नु जन्म दे देंदी है, इस तरह का घोर पाप किसे अवतार नु जन्म दे दे। परमात्मा दे सिद्धे बोल पकड़दा है ते जगत नु सुनदा है। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, किथे जगत अवतारा दे बोल नु पकड़दा है पूरा, थोड़े जिया फिर भी पकड़दे नु दे नाल रोशनी हो जाती, उसने नाल काफी ठरम्मा हो जाता है। कलगीधर पिता भी इस तरह लिखते ने, जब जब होए अरिष्ट अपारा, दसम ग्रंथ, जब जब होए अरिष्ट अपारा तब तब दे धरत अवतारा। उस वक्त कोई अवतार दे ही धारण करता है जब सारी सृष्टि विच अरिष्ट होवे, भाव गलत होवे, कुछ भी सही ना होवे, तां फिर कोई ऐसा अवतार जो सीधा अकाल पुरख दे बचना नु पकड़दा है और जगत दे सामने रखता है। अवतारा दे राही गुरुआ दे राही जिन्हों की पकड़ दे चाह जांदे ने, वो भगत, वो गुरमुख, वो ब्रह्म ज्ञानी। तो चूंकि बोल ते परमात्मा दे ने, ज्ञान ते सारा परमात्मा दा है, तो गुरु नानक कहंदे ने परमात्मा ही गुरु है और कोई गुरु नहीं, ईश्वर ही गुरु है। वो जो एक है वो ही गुरु है। अखीर विच इस मूल मंत्र नु जिस ढंग नाल समाप्त कर देने, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने प्रसाद है, गुर प्रसाद, प्रसाद और गुर, ये दो मजमून अपने आप विच इस तरह दे ने, थोड़ा जिहा मैं इन्हां नु खोलना चाहना ताकि ज़हन विच ये गल पूरी बैठ जाए। पता नहीं कितना सिख जगत भटक रहा है, देहदारी गुरु चाहिदा है कि नहीं, कौन दसे कदी देही भी गुरु आउंदी है, अज है ते कल नहीं। इहदा मतलब गुरु मिट जांदा है, गुरु मर जांदा है, ते जो मर जांदा है ओ गुरु सदीवी जीवन थानू किस तरह देवेगा, किस तरह देवेगा। गुरु ते शब्द है, गुरु ते ज्ञान है, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। किसे देही कोल भी जाओगे तो वो जो उपदेश कर रही है उपदेश नो हिरदे च वसाओगे कि उस देही नो, जे आखो देही नो हिरदे च वसाना है तो उपदेश सुनन दी लोड़ ही नहीं, की लोड़ है। ते जे उपदेश नो हिरदे च वसाना है ते ताई हिरदा बदलेगा, तां ते फिर देही दी कोई कीमत ही ना रहेगी। देही दा उतना ही सन्मान जिवें किसी ने कोई कपड़े पहने अवन ते कपड़ियां दी कदर, कपड़ियां दा सन्मान, भाई फलाने दे कपड़े ने, फलाने दे वस्त्र ने। जिवें रुमालियां दा असी सत्कार करदे आ, गुरु ग्रंथ साहिब दे रुमाले ने। पर हुण मैं अर्ज करां कि अखर ए वी रुमाले ने, कागज ए वी रुमाले ने, अखरां दे च जो ज्ञान है यही परमात्मा। ओरे दे चों गुरु नूं कढ़णा पैंदा, मक्खण शाह लवाणा बनना पैंदा, गुरु ते हर वक्त बोले च, ये भी मैं अर्ज करते। बाई दे दारी गुरु बार बैठे सन ते हजारा लोग भुल जांदे सन, उन्हां नूं मत्था टेक के वापस हो जांदे सन, तसल्ली नहीं आउंदी सी किसे दी। मक्खण शाह लवाणा आया, इहदे कोल अख सी, कहिंदा है रब दा कलाम अकाल पुरख दे बोल ते मैनूं किसे कोल नहीं दिखाई दित्ते। तो चलो ये साधक होणगे, संत होणगे, ये अवतार नहीं ने, ये नहीं ने, ये गुरु नहीं ने।
ਚਲੋ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਦਾਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ? ਉਸ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋਢੀ ਬੰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਭੋਰੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਸਨ, ਲਿਸ਼ਕੇ ਪੁਸ਼ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਗਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਭੋਰੇ ਚ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰ ਲਾ ਧੋਰੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਭੋਰੇ ਚ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਚ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਚ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕੱਢੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਬਸਾਓ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਓ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਜੈਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਜੋ ਦੀ ਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਵਿੰਦ ਅਨੂਪ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇਧਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਧਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਧਰ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਬੋਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣੇਗਾ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਖ ਸੁਣੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਣ ਪਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਸਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੂੜ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੱਲ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਪੂਰਵਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਦਿਹਾਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਗਾਲ, ਬੜੀ ਗਾਲ ਨਾ ਗਾਲ ਦੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ।
मेहनत कर करके एक कोई ज्ञान मिलेगा कि मेहनत नाल नहीं मिलेगा, प्रयास कर करके एक कोई पता चलेगा एक गल दा कि प्रयास नाल नहीं मिलेगा। वो जद मिलदा है उदा प्रसाद, वो जद मिलदा है उदी रहमत उदी कृपा, साडा कर्म नहीं उदी कृपा, साडा प्रयास नहीं उसका प्रसाद, साडी मेहनत नहीं उसकी रहमत। अगर मेरी मेहनत नाल मैनू परमात्मा मिल गया तो मेरी मेहनत उसकी कीमत है, इतनी मैं मेहनत करांगा मिल जाएगा, किसी नूं भी मिल जाएगा, फिर परमात्मा अमुल नहीं है। फिर ये शब्द कहने बनते नहीं, कीमत पाए ना कहा जाए, कहने वाले तेरे रह समा, तेरी कीमत नहीं है, तेरा कोई मुल नहीं है, मेरा कोई भी कर्म तेरा मुल नहीं है, मेरा अमृत वेले दा उठना तेरा मुल नहीं है, मेरा वाहेगुरु वाहेगुरु दा जप करना तेरा मुल नहीं है, तीर्थां दा इशनान दान पुन सेवा ये तेरा मुल नहीं है, राम राम दा रटन ये तेरी कीमत नहीं है। तू मिले हैं मेरी मेहनत नहीं तेरी रहमत, तू मिले हैं मेरा प्रयास नहीं तेरा प्रसाद, पर जद मिले है प्रसाद ही है, जद मिले है उदी रहमत ही है, तो मेहनत करन दी की लोड़ है। यकीन जानो मेहनत कर करके ही पता चलता है, नहीं पता चलता, मेहनत कर करके इतना ही पता चलता है कि मेहनत नाल नहीं मिलेगा। गुरु नानक इसनों इस तरह कहने ने, गाल ना मिलियो सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता मल्ला पहला। गुरु नानक दी बाणी, गाल नाल नहीं मिलिया, सेवा नाल नहीं मिलिया, दान नाल नहीं मिलिया, पुन नाल नहीं मिलिया, कोई दान करोड़ां दा उसकी कीमत नहीं, कितनी सेवा जीवन भर दी उसकी कीमत नहीं, कितना जप जिंदगी भर दा उसकी कीमत नहीं, नहीं मिलता, ना कीते जप नाल मिलता है, ना दिते दान नाल मिलता है, ना कीती सेवा नाल मिलता है। फिर किस तरह मिलता है? वो मिलता है अचनचेत। गाल ना मिलियो सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता, अचनचेत मिले। तो अचनचेत किस तरह मिल गया? उदा प्रसाद उदी बख्शिश उदी रहमत, मेहनत नहीं उदी रहमत, आया ये रहमत आखिर होंदी होवेगी कोई ढंग ते है, कोई तौर तरीका ते है। इन्हों गुंजलां नूं गुरबाणी ने जिस ढंग नाल खोले है, मैं कल आप जी दे सामने रखण दी कोशिश करांगा, और समय नूं मुख रखदे होया इंज कह लो कल समाप्ति कर देंगे। उंज ये मूल मंत्र धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी सारी बाणी मूल मंत्र दी व्याख्या है। दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ इंज कह लो मूल मंत्र का टीका ने, और कुछ नहीं है। ईश्वर के सारे बुनियादी गुण मूल मंत्र दे आ गए ने। वो एक है, वो ओंकार है, उस उत्पत्ति पालना नाश हो रहे, वो एक सत है, वो जो एक है उसका नाम है, उसे दा ही नाम है, अमिट है, बाकी किसे दा नाम है? सब नाम मिट जाते हैं, समा पा के मिट जाते हैं। वो जो एक है वो ही करता है, और जो एक है अपनी कृत दे च बैठा है, अपनी कृत तो वक नहीं है। वो जो एक है उसके स्वभाव दे च भय नहीं है, उसके स्वभाव दे च वैर नहीं है, उसकी होंद दे च काल नहीं है, समा नहीं है, वक्त नहीं है। वो जो एक है बकायदा मूर्तिमान है, और वो जो एक है उसने किसी ने बनाया नहीं, अजो नहीं है। वो जो एक है सैभंग है, अपने आप तो आप ही विस्तृत होया है, अपना पसारा उसने आप ही कीता है, आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचे हो ना। वो जो एक है वही गुरु है, वो जो एक है वही प्रसाद। इस सारी व्याख्या उस एक दी, फिर सारे गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी उस एक दी व्याख्या, दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ उसकी व्याख्या, जेडे मूल गुण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मूल मंत्र दे बयान कीते ने। गुर प्रसाद इसका थोड़ा जहा खुलासा कल आप जी दे सामने रख के
इस दौर दे जवाब जी नाल संजोग बनिया दो हफ्तियां दा कल जो है समाप्ति करांगे। रोज आप समा कटदे रहे सतगुर रहमत करन कि गुरुद्वारे आण दा ख्याल रोज आवे थोनू। मैं इतना अर्ज करदे आ जिवें आदमी पुत्रां कोल बैठदा है, मित्रां कोल बैठदा है, पत्नी कोल बैठदा है, पति कोल पत्नी बैठती है, भरा कोल भरा बैठदा है, जैसे मित्रां कोल बैठदे आ, इसी तरीके नाल गुरु कोल आके बैठना चाहिए। और थोड़ा जिहा मैं अपने अनुभव के आधार पर कह दिया, नहीं कीर्तन हो रहा तां भी ना सी, बैठना भी लाभकारी। इतना भाव होवे कि असी गुरु नानक दे कोल बैठे, असी कलगीधर दे कोल बैठे, ये बैठना भी लाभकारी हो जाएगा। सुनना तो लाभकारी है, बैठना भी लाभकारी, लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा ताकि मन दे भाव इस तरह दे जो है बनन। खैर, बाकी विचारां कल तुहानू जो है लेटना करा। एक दफा मैं फिर दोहरा दें, वो गुरु है, सारा ज्ञान उसे तो आ रहा है, सिर्फ सूरज की रोशनी उसे तो नहीं आ रही, ज्ञान की रोशनी भी उसे तो आ रही है। और वो प्रसाद है, उस दे च करोपी नहीं है, उस दे च सराप नहीं है, वो जालम नहीं है, रहमान है, रहीम है, वो करीम है, वो प्रसाद है, वो बख्शिंद है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो कठोर नहीं है। खुदा ऐसिया सजावां देंदा है, ऐसिया करणिया सजावां, जिथे जिथे जो कुछ भी लिखे है यकीन जानो गलत लिखे है, गुस्ताखी माफ। कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं। ये भी मैं अर्ज कर देना, ना जगत किसी नो कोई सजा देंदा है, ना परमात्मा, साडे अपने लक्षण ही सानू सजा दे देंगे, साड़ी अपनी करनी ही सानू सजा दे देंगे, असी अपने कीते करके ही जो है दुख पा लेंगे। परमात्मा दुख देने वाला नहीं है, अगर दुख देने वाला है तो फिर उन्हें रहीम कहने की लोड़ नहीं है, उन्हें करीम कहने की लोड़ नहीं है, उन्हें रहमान कहने की लोड़ नहीं है, उन्हें प्रसाद कहने की लोड़ नहीं है, उन्हें कृपालु ते दयालु कहने की लोड़ नहीं है। वो ते इतना दयालु ते कृपालु है, इतना प्रसाद है। ईरानी सूफी संत हाफिज कहते ने, सद सालाबा इम्तिहान गुनाह फाहम करद, ऐ खुदा 80 साल की उम्र च इसने ये बोल रचे ने। कहिंदा तू मैनू 100 साल तक जे जिंदा रह रखिया, 80 साल का तो मैं हो गया, 80 साल तक मैं गुनाह ही कीते ने, जे बाकी होर तू मैनू 20 साल की जिंदगी दिती ना तो मैं गुनाह करांगा, पुन नहीं करने, पाप करने ने। सद सालाबा इम्तिहान गुनाह फाहम कर द, एक फकीर दे मुंह ये बोल चंगे नहीं लगते, पर फकीर बड़े निराली बिरती दा फकीर सी। ईरान दे जितने फकीर हुए ने उन्हां दे च एक चोटी दा फकीर है। उंज उस धरती ने बहुते फकीर पैदा कीते, शेख सादी सी, उमर ख्याम सी, फिरदौसी उत्थे ही होया, हाफिज जो है उत्थे होया, शेख सादी उत्थे ही होए ने, शम्स तबरेज उत्थों ही आए सन, सरमद भी उत्थों ही आया सी। इस तरह के बहुत सारे चोटी दे सूफी संत उस जमीन ने पैदा किए, उन्हां दे चोई के है हाफिज। जिस तरह हिंदुस्तान की मिट्टी ने ऋषि पैदा किए, मुनि पैदा किए, ज्ञानी पैदा किए, भगत पैदा किए, संत पैदा किए, अवतार पैदा किए, ईरान की मिट्टी ने कुछ फकीर पैदा किए, सूफी संत पैदा किए। उन्हां दे च हाफिज का अपना एक खास नाम है। कहिंदा सद सालाबा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम करद, ऐ खुदा जिस 100 साल तक मैं जिंदा रहा, पिछली जिंदगी ते मेरी गुनाहां च बतीत होई है, अगे होर भी गुनाह करांगा, 100 साल तक करांगा, अगर तू 100 साल दी मैनू जिंदगी दिती। क्यों? ऐ खुदा तू ते मेरे कदम कदम ते इम्तिहान लैना, मैं फिर तेरा इम्तिहान लेना है। कि ता जुर्म मन अस्त बेश या रहमत तो, मैं एक पलड़े दे च रखांगा अपने 100 साल दे गुनाह,
ਤੋਲਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ ਦੇ ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਹਿਰਦਾ ਬੋਝਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਰਹਿਮਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਕਾ ਜਬ ਦੇਖਾ ਹਸ਼ਰ ਨੇ, ਚੀਖ ਉਠਾ ਹਰ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰੋ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਬਖਸ਼ਿਨ, ਇਤਨਾ ਦਿਆਲੂ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਚ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਰਹਿਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਇੰਜ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਨਰਥ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਧਰੇ ਇੰਜ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਲਟ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦ ਸਾਲਾ ਬਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਗੁਨਾਹ ਖਵਾਹਮ ਕਰਦ, ਐ ਖੁਦਾ ਬੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤਰਾਜ਼ੂ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਐ ਖੁਦਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਪੋ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਜਪੋ। ਅਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਇਤਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਕਿੱਥੇ, ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਾ ਰੱਖ ਪੁਰਖਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਤਨਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਭ ਕੁਝ ਧੋ ਦਿੰਦੀ। ਲੱਖ ਮੜੀਆ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਏਕ ਰਤੀਲੇ ਭਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿਨਗਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੜਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਲ ਭਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਿਨਕ ਤੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਚਿਨਗਾਰੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਆਪਣੇ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਉਸ ਤੇ, ਉਹ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਇਆਲੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇਤਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੋਜ਼ ਆਪ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।

गुड्डेल सिंह बाथौर डेयरी लैके आए ने बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नियर साउथ सरी वाइट ट्रॉक क्लोज टू द बॉर्डर विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ होम एंड बिजनेस. इन्वेस्ट करो 8 acres at the 100,000 square feet the greenhouse nursery business which and be your own boss. The Hatti family ਲਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ

गए, गुरु गोबिंद सिंह मेरा यार बन गया, यार नू पुत दे के आया, ओदे बदले यार ने केस दे दिते। फिर अर्ज इनू भाई नंद लाल साहब दियो शेर, दीन दुनिया दर कमंदे आ परी रुखसारे। ए परी लफ्ज दर्त पुरी नहीं नू पढ़ना, परियां परियां नहीं होंदियां, जिहड़ियां कहिंदे बड़े हुसीन परियां, ओ वाह वाह भाई साहब कहिंदे ना लोको कादियां परियां दे मुआं दियां गल कर दे, एक बारी मेरे गुरु गोबिंद सिंह दा चेहरा देखो, एदे सरूप दे सामने परियां दी भी कोई कीमत नहीं। मेरी फिर बेनती है, दीन दुनिया दर कमंदे आ परी रुखसारे मां, हर दो आलम कीमते यक तारे मुवे यारे मां, मेरे माही दे एक वाल दे विच एक जुल्फ दे विच दीन ते दुनिया दोनों बजे को। मैं आप नूं बेनती करा, मां ने केस पाले, भाई तारू सिंह अमृतधारी है, आप हलवंद है जी, शाम नूं तिन्ने मां ते दोनों भैण भरा तिन्ने बैठ के सिमरन करदे आ, कीर्तन करदे आ, ते पिंड विच इन्ना सन्मान जी की हिंदू की मुसलमान, मैं अगे अर्ज करांगा हर बंदा भाई तारू सिंह नूं रज के सन्मान दिंदा है। इथों तक जिहड़ा मैं पिंड सिंहपुरा कहा ना नेड़े, यह नवाब कपूर सिंह दा पिंड सी, जिहड़ा सिंहपुरी ने फैजलापुरी जिहदी मिसल सी ना, यह उन्हां दा पिंड है जी। इलाके दे जिन्ने चंगे जीवन वाले ने भाई तारू सिंह दा बहुत सन्मान करदे ने। अज शाम नूं भाई साहब आए, सारे बाणी पढ़ के तिन्ने जने खटे, ते मां नूं कहिंदा मां अज दुबारा फिर आनंदपुर साहिब वाले दिन आ गए। उन्हें पुछया जी की मैं थोड़ा जी इतिहास तां लै लिया अज विचार नूं विराम दे के, क्योंकि कल मैं बाबा जी का जिक्र किया सी, अज एक गुरु हरकृष्ण साहब का अगले हफ्ते पुरब आना। भाई साहब कहिंदे मां आनंदपुर आ गया, पुत की समझी नहीं, कह लगी अज मैं सिंह देखे ने, कचहरे पाठे ने, सची मुची लीर बन गए ने, गातरे पाठे ने, रोटी नहीं मिलती, खेतां चाहे लंघे ने। मां अगो कहिंदी पुत मेरिया पता मेनू भी है, पैरां च जुत्ती नहीं पर सिदक उहनां नूं, जिहड़ी गल मैं सबर कही, सिदक उहनां नूं कंडियां दी छालियां दी पीड़ नहीं होण दिंदा, उहनां दे तन ढक्कण नूं कपड़े नहीं पर सदक ते गुरु दी रजा उहनां नूं सर्दी गर्मी नहीं लगन दिंदी, नींद नहीं कई कई दिन पूरी हुंदी, तुरे रहिंदे आ। पुत मेरिया सबर ते सिदक उहनां नूं अपनी गोद विच समा दिंदा है, उहनां नूं रोटी नहीं मिलदी, ढिड विच कड़लां पैंदियां ने पर सिदक उहनां सिंघां नूं भुख नहीं लगन दिंदा। कहिंदे मां आपां की कर सकने आ सेवा वास्ते, जिवें भाई साहब कह के गए किन्ना उत्थे चल रहा है, वेखो असीं किसे दे विरोध विच नहीं भी फलाना धर्म की कर रहा है, साढ़े प्रबंध दियां नलायकियां करके सब कुछ हुंदा पिया। उत्थे एडा वड्डा बजट होवे, हजारां एकड़ जमीन कमेटी कोल होवे ते फिर भी कुछ ना कर सके, इहदे विच तुसीं सारे इस गल तो जाणू हो, क्योंकि इहनूं कल्पन दी लोड़ नहीं। मैं साडी इच्छा जिवें भाई रजिंदर सिंह कह के गए, मैं चाहना 10-15 प्रचारक, पैसे कट्ठे करने लई नहीं, उहनां नूं पिंड दित्ते जाण, तहसील पद्धर ते ब्लाक पद्धर ते, ते आ वखरेवा ए फलानी जथेबंदी जी, फलाना जथा जी, फलाना, इस चीज नूं खत्म करो। जे सिखी बजानी सिर्फ एक पंथ ते गुरु ग्रंथ दी गल करो, मेरी बेनती है तां बचेगा, जे नहीं ते साडी सारी ऊर्जा जेड़ी एक दूजे नूं ठिब्बियां लाण ते लगी है। सच्ची जी, एक छोटे जे गुरुद्वारे तो लैके पूरे पंथ तक लै लो, ये सच्चाई असीं दूजे नूं थला लाना चाहने आ, एक दिन किसी नूं थंदे लांदे लांदे आप ही थले लग जांदा बंदा, नहीं इहदे विच उच्ची सोच लैके तुरिए। मेरी मंजिल की हो प्यारिओ, आप कुल्लू कलूहारे वड्डे च कुपरेड़े, सरदार चरण सिंह ने कहा अपने रणजीत सिंह दे दादे ने भी मिसलां वंड के आपां लड़ी आपो अपनी जथेबंदी, जस्सा संघालो वालिया खून नाल भिज्जा होया, तकरीबन 22-19 फट लगे। ओ कहिंदा चरण सिंह नूं सरदार जी जथेबंदियां वंड के ना लड़ो, पंथ बचेगा ते जथेबंदियां बना लिया, जे जे पंथ ही ना बचिया ते मिसलां कादियां बनानियां, मिसल वंड अब कबू ना पावो, रल मेल तुर खड़ पंथ बचाओ। मैं आप नूं बेनती करा, उत्थे फिर उस मां बाप मां ने जदों इह क्या आ कुछ हो रहा सिदक उन्हां कोल, कहिंदा बीबी जां मां क्या होना साडे माझे च बीबी।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण @604581190।